जती के सूर सरातन शुद्ध सुधारक संत समूंगा देख मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखी प्राण पति के श्री भगवान कृपाए कृपा हुंदे एक रति मन एक रती के मातिम तंग जरे जर संगा रूप तंग सुरंग सवारे कोट तरंग कुरंग सिकुदता पौन के कौन को जातन मारे भारी भजान के भू परी मेर नाम शीस न जात विचारे हेते पैता कम बाबू बताए अंत को नंगे ही पाए पदारे जीत भरा सबदे दसान को

सतगुर प्रसाद अवतर आए कहा तुम कीना, राम को नाम न कबू लीना, राम न जपो कवन मत लागे, मर जाए बे क्यों क्या करो अपागे रहाओ, दुख सुख करके कुटंब जीवाया, मरती बार एक सर दुख पाया, कंठ गहन तब करन पुकारा, कह कबीर आगे ते ना समारा, सूही कबीर जियो तर हर कंपै बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो, रहन गई मत दिन पी जाए, पवर गए बग बैठे आए रहाओ, काचै करवै रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, क्वार कन्या जैसे करती सिगारा, क्योर लिया माने बाज पतारा, काग उडावत पूजा पिरानी, कहे कबीर एह कथा सिरानी, सूही कबीर जियो अमल सरानू लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहा गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दर हाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दर गह का आया रहाओ, करो अरदास गाव किछ बाकी, लियो नबेर आज की राती, किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह नवाज सबा सुराए गुजारो, साध संग जा कौ हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा, ईत ऊत जन सदा सोहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया, कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बेसार माटी संग रूले, सूही कबीर जियो ललत ताके नैन सरबन सुन ताके, ताकी सुंदर काया, जरा हाक की सब मत थाकी, एक न थक समाया, बाबरे तै ज्ञान विचार न पाया, बिरथा जन्म गवाया रहाओ, तब लग प्राणी तिसै सरेवो, जब लग घट मैं सासा, जे घट जाए ता भाउ न जासी, हर के चरण निवासा, जिसको शब्द बसावै अंतर चूकै तिसै प्यासा, हुक्मै बूझै चौपड़ के लै, मान जिन ढाले पासा, जो जन जान भजै अवगत कौ, तिनका कछु ना नासा, कहो कबीर ते जन कबहो ना हारै, ढाल जो जानै पासा, सूही ललत कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मंगै हाला, जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला, हर के लोगा मोको नीत डसै पटवारी, ऊपर पुजा कर मह गुर पह पुकारिया, तिन होलिया ओ बारी रहाओ, नौ डाडी दस मुनसफ धावै, रैयत बसन ना देही, डोरी पूरी मापै नाही, बहु बिश टाला लेही, बहत्तर घर इक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सोधिया, बाकी रिजमना

सुख सब साध संग प्र मनसा पूर जित जित लाभ हो तित लग है सियाणप सब जाली जद कर तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली सब कुछ तुम ते मांगना बड़पागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए बिलावल मोहल्ला पंजवा साध संग कै बास बह कलमल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ न ग्रसना नाम कह तू गोविंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ हद चाक त्राप्त्या मन रस लय हसना बुद्ध प्रगस प्रगट पई उल्ट कमल विगसना शीतल शांत संतोख होए सबू जी त्रिसना दय दिस तापत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राख्या पै भ्रम नसना नाम निदान नानक सुखी पेख था दर्शना बिलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल राज मिलक सहदारियाँ अग्नि में जाल संत जना का शोहरा तिस चरनी लाग माया तारी शतर पातन छोड़ो त्याग रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर निदान गृह सागत शति ही प्रकार ते भी भूसमान भक्त जना का लूगरा उड़ नगर न होई साक्त सरपोरे स्मीह पैरत पद खोई साक्त स्योमुख जोरिए अदवी चौह टूटे हर जन की सेवा जो करे ऐतू ते छूटे सब कुछ तुम ही ते हुआ अपनी बनत तो सब कुछ तुम ही ते हुआ आप बनत मनाई दर्शन भेट साध कहा नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा श्रवणी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीस तर हर नाम त्यावो कर कृपा दे आल प्राव ए निध सिद्ध पावो संत जना की रेण काल माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बुलावो पाप मलोवा आप त्याग सत्संग समावो सास सास न विसरे अनकथे न तावो सफल दर्शन गुर पेटिए मन मोह मिटावो सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो सगल सुहागण नानका अपने प्रभ पावो बिलावल महला पंजवा अटल भजन साधु जना सब में प्रगटाया जिस जन हुआ साध संग तस पेटे हर राया ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया अनेक बाता सब करे गुर कर ले आया रहाओ सरन परे की राखता नाहीं सहसाया करम भूम हर नाम बोय अवसर दुल पाया अंतर जामी आप राम सब करे कराया पाते तो पनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया मत पूलो मानक जन माया परमाया नानक तिस पथ राखसी जो प्रभ पहराया बिलावल महला पंजवा माटी ते जन साजिया कर दुर्लभ देह अनेक शिदर मन मह टके निर्मल दृष्टे क्यों बिसरे प्रभ मन ते जिसके गुण एह प्रभ ताज रचे जे अण स्यों सो मिलिए खेहे रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करेहे छोड़ पर पंच प्रभ स्यो रचो तज कूड़े नेहे जिन अनेक एक बौरंग किए है होसी एह कर सेवा तिस पारम गुरते मत लेहे ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे दास दास को दास रहा नानक कर ले हे बिलावल महला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन्यास सब ऊपर समर्थ प्रभ पूर्ण गुणतास जन का नाम आधार है प्रभ सरनी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे दीन दयाल कृपा निदे सा सास समारे करण हार जो कर रहा साई वड्याई गुरपुरे उपदेसिया सुख असमर जाए चिंत अदेसा गंथता जन हुकम पछाता नै बिनसे न छोड़ जाए नानक रंग राता बिलावल महला पंजवा महातप्त ते पई शांत परसत पाप नाठे अंधकूप में गलत थे दे काडे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जन भेड़त होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए बस संग हर साध के पूर्ण आसाए पै बिन से ते लोके पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नाने की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन करन समरथ प्रभ हर अगम अपार बिलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चित आए संतन के आनंद हो नित हर गुण गाए रहाओ ऊंचे ते नीचा करे नीच खिन में थापै कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना पया संग चलया कमाया करन कान समर्थ प्रभ तेरी सरनाई हर दिन सरण

0: जात ना कही मेरे प्रभु की, उपमान जात ना कही, ताज्ञान शरण गही रहा, प्रभु चरण कमल अपार, हम जाऊं सद बलिहारा, मन प्रीत लागे चाहे, ताज्ञान कतै ना जाए, हर नाम रस ना कहना, मन पाप कल मल दहना, चरणाव शांत उधार, तेरे सारा दर पार, मन डोर प्रेम प्रीत, यह संत निर्मल रीता, तज के पाप विकार, हर मिले प्रभ निरंकार, प्रभ पीखिए विस्माद, चाख आनंद पूर्ण साद,
1: न डोलिए इत ऊत, प्रभ बसे हर हर चीत, ਨਾਹੇ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ ਨਿਤ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸ ਤੇ ਜਮ ਨ ਪੇਖੇ ਨੈਣ ਸੁਨ ਮੋਹੇ ਅਨਹਤ ਬੈਨ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਸੂਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ ਵਸ ਦਿਆਲ ਹਰ ਨਿਗਮ ਲਹੇ ਨਾ ਭੇਵ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਮੁੰਜਨ ਸੇਵ ਦੁਖ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ

0: बिना दुख भी अपै जन्म मरण नांत रिद सिद्ध सुधार से अमृत भगत परे भंडारा बिनवंत नानक बल हार वंजाम पार ब्रह्म प्राण आधारा सुन सखियो सहेलड़ियो मिल मंगल गावा राम मन तन प्रेम कर तिस प्रभु को गावा राम कर प्रेम गावा तिस पाव
1: कोई जैसे पुराण पात रह जल समीप मन रबदास जन्म जग हुए बाणी सदने की राग बुलावलो एक ओंकार सतगुरु प्रसाद निरपकन्या के कारण एक भया भीख धारी कामारती स्वार्थी वागी भैज सवारी तब गुण कहा जगत गोरा जो कर्म ना नाशै सिंह शरण कत जाइए जो जम्ब को ग्रासै रहाओ एक बूंद जल कारने चातरक दुख पावे प्राण गए सागर मिले पुन कामना आवे प्राण जो थाके थर नहीं कैसे बिरमावो बूढ़ मुए नौका मिले कौ काहे चढ़ावो मैं नहीं कछाओ नहीं किस आहे न मोरा अवसर ल जा राख ले हो सतना जन तोरा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सहपुर प्रसाद राग गुंड चौपदी मोहला चौथा घर पहला जे मन चित आस रखें हर उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब किसी जो जी वरतै प्रभ घर लिया किसे का एक तिल ना गवाई हर तिसकी आज की जयमन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई मेरे मानो आशा कर जगदीश गोसाई जो बिन हर आस अवर काहू की कीजे सा नह फुलास सब वृत्ति जाई रहा जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनके किस हाथ नहीं कहाँ करें ए बपड़े इनका बाहया कसना बसाई मेरे मनाज कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तार है तेरा कुटंब सब छुड़ाई देख सास अवर करें पर मित्री मत तू जाने तेरा कितै कम आई ये आस पर मित्री भाव दूजा है खिन मैं झूठ बिंज सब जाई मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा घालिया सब थाए पाई आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आज करावें तैसी को आज कराई किस किसी के हाथ नाही मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाई जा नानक की आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन त्रिपताई गोंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित त्याई है जो खिन मैं किल विख सब करे बिनाशा जे हर त्याग अवर की आज कीजे ता हर नह फल सब का हाल गवासा मेरे मन हर सेव सुखदाता स्वामी जिस सेवें सब भुख लहासा मेरे मन हर उपर कीजे परभाषा जै जाइए तै नाल मेरा स्वामी हरे अपनी पैज रखै जन दासा राव जे अपनी बिरथा कहूँ अबरा पै ता आ गए अपनी बिरथा बहुत बहुत कढ़ाशा अपनी बिरथा कहूँ हर अपने स्वामी पै जो तुमरे दुख तत्काल कटाशा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अबरा पै कही है अवरा पै कह मन लाज मराचा जो संसार के कुटंब मित्र भाई दिसै मन मेरे ते सब अपने सुहाए मिलासा जित दिन उनका सुहाओ हुए ना आवे ਤਿਤ ਜਨ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਾ ਟੁਕਾਸ਼ਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੇਵ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੋ ਤੁਰ ਉਪਕਰੈ ਦੁੱਖ ਸੁਖਾਸ਼ਾ ਤਿਸਕਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਰੱਖਣਾ ਸੁਖਾਸ਼ਾ ਹਰ ਜਪ ਮੰਤ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਪੋ ਤਿਨ ਅੰਤ ਛੁਡਾਏ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਚਿਤਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਸੰਤੋ ਇਹੋ ਸੂਟਣ ਕਾ ਸਾਚਾ ਪਰਭਾਸ਼ਾ ਗੁਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ੀਤਲ ਮਨ ਆਪਣਾ ਜੈਸੇ ਸਖਤ ਸੂਰ ਬਹੁ ਜਲਤਾ ਗੁਰ ਸਚ ਦੇਖੇ ਲੈ ਜਾਏ ਸਭ ਤਪਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਿਨ ਧਿਆਏ ਨਾਮ ਹਰ ਜਪਨਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਝ ਰੱਖੈ ਸਭ ਠਾਈ ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਸਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰਾਉ ਜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਸੋ ਹਰ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹੋ ਹਰ ਰਤਨਾ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਮਾਲੋ ਹਰ ਦਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਰਾਮ ਰਸ ਪਾਵੋ ਉਹ ਊਤਮ ਸੰਤ ਭਇਓ ਵੱਡ ਵਡਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰੇ ਆਪ ਵਧਾਈ ਉਹ ਘਟੈ ਨਾ ਕਿਸੈ ਕੀ ਘਟਾਈ ਇੱਕ ਤਿਲ ਤਿਲ ਤਿਲ ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੋ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਨਿਤ ਕਰ ਜੁਰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਹਰ ਦਾਨ ਇੱਕ ਦੀਜੈ ਨਿਤ ਵਸੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰੀ ਮੋਹੇ ਚਰਨਾ ਗੁਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਤਨੇ ਸਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਾਬ ਸੁਖਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਣ ਹਰ ਅਵਨਾ ਸੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਿਚਲ ਤਿਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਹਰੀ ਭਜ ਸਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਹਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਦਾ ਤਾਣ ਰਾਓ ਜਿਤਨੇ ਤਲਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਮਿਲਕਵੰਤ ਦੀ ਸੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਬਿੰਸ ਜਾਹੇ ਜਿਉਂ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਬ ਕੁਚਾਣ ਹਰ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸਦਾ ਸੇਵ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਤ ਹਰ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਤੂੰ ਮਾਣ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸੂਤ ਵੈਸ ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਉਂ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਫਸੈ ਹੈਡ ਬੱਪੜਾ ਤਿਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਪਤਤ ਪ੍ਰਵਾਣ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਭ ਤੇ ਸੂਚਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤਿਜਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੈ ਜੋ ਹਰ ਜਾਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਸੇਵਕਾਣ ਗੁਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਤੈ ਵਰਤੈ ਜਿਹਾ ਹਰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਕੋ ਕਰਈਐ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਧਨੋਂ ਸਭ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਈਐ ਹਰ ਬਿਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਵਾਲ ਨਾ ਸਕੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੈਦ ਕਢਈਐ ਰਹਾਉ ਹਰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੀਆ ਸਭ ਕਰਤੈ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰਈਐ ਹਰੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਏ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰੇਕ ਦਿਖਈਐ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਕਹੋ ਤਿਜ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਕਿਆ ਚੁਰਈਐ ਨੈ ਕਪਟ ਸੇਵਾ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਈਐ ਜਿਹਦੇ ਬਸ ਸਭ ਕਿਸ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਤੁਧ ਲਏ ਛੁਡਈਐ ਗੂੰਡ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤ ਹੈ ਜਿਉਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਬੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਹਮਨੀ ਵੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ ਰਹਾਉ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੈ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ सब केले सतगुर की मत तीर मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के ले सतगुर की मत तीर जन नानक की हरे आज पुजावो हर दर्शन सांत शरीर राग राग गूंड महला पांजवा चौप दे घर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता राहो सुनतो करता पीकत करता आदृष्टो करता दृष्टो करता उपत करता परलो करता व्याप्त करता लिपतो करता भक्तो करता भूजित करता आपत करता जात पी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुरप्रसाद नानक साम दृष्टा गुण मोहला पंजवा भाक्यो मीन कबक की न्याय तू उर्ज रहो कुसुम पाइले पग तारा सास लेखे लै ता उधर हर गुण गायले मन समझ छोड़ आवैले अपने रहन को ठौर न पावे काय पर कह जैले रहाव ज्यों मैं गल इंद्री रच प्रेरियो तू लग परियो कुंडम पहले कुटम भैले ज्यों पंखी एकत्र होए फिर विचरै तिर संगत हर हर त्याले जैसे मीन रचन साध बेंसियो हो मूठो मुड़लो पाइले तू हो आ पंच बाश बैरी कै सूटें परसर नैले हो कृपाल दीन दुख भंजन सब तुमरे जी जनताइले पावो दान सदा दर्श पेखा मिल नानक दास दिसले राग गोंड महला पंजवा चौप दे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण की ए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब कुछ भोजन पोवाए सो प्रभु ताज मूड़े कत जाए पराप पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजय निरंजन देव राहो जिनकी रंग अनक प्रकार उपत परलो निमुख मजार जा की गति मित कही ना जाए सो प्रभु मन मेरे सदा ते आए आए न जावे न चलते नी बेअंत गुना ताके कीर्त गनी लाल नाम जाके परे भंडार शुकल कटा देवे आधार सतपुरख जाको है नाव मिटै कोट अग्निमुख जस गाव बाल दिखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गुण महला पंजवा नाम संग कीन्यो व्यवहार नामोही
2: वाहिगुरु
1: इस मन का आधार नामोही चित कीनी ओट नाम जपत मिटै पाप कोट राज दी हरे को नाम मन काइट गुरु संग ध्यान राव नाम हमारे जी की राज नामो संगी जदकत जात नामो ही मन लग मीठा जल थल सब मैं नामो डीठा नामे धर गए मुख उजले नामे सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग मन मंगीद नामे ही हम निरपा पहे नामे आवन जावन रहे गुर पूरे मिले गुण दास को नानक सुख सहज निवास गुण महला पंजवा माने को जो दे तो मान सकल भूखे को करता दान गर्भ को मैं राखन हार तीर्थाकर को सदा नमस्कार ऐसो ब्रह्मान माहे ते आए कटे घट जद कत सहाय राव रंक राव जाक एक समान कीट हत सगल पुराण ये पूछना मसलत रह जो किस करे सो आप।

0: पत तू झांके संगोदार एक
1: गाहे गुरु
0: नाम आधार धर्म जी का जाना पे हो कृपा रंजन देव पर ब्रह्म जप है कृपाल तब पीटे गुरु साध दयाल देर रह नानक नाम ते आए सुख सहज आनंद हर नाय गुण महला पंजवा गुरु की मूर्त मन में ध्यान गुरु कह शब्द मंत्र मन मान गुरु के वचन हृदय लै
1: अमृत वाणी
0: मन को भूले संसार गुरु मन को उत्तर च पाराओ भूले

0: सिमरत काहे नाराम, सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोए। कहु नानक सुन रे मन, तेह सिमरत गत होए, जे सिमरत गत पाईए, ते भजरे तै मीत।
1: त्रिकाल पाई दुर्लभ,
0: कहु नानक सुन रे मन, औध घटत है नीत, पांच तत् को तन रचियो, जानो चतुर सो जान, जेहते उपजियो नानका। काट काट में हर जू बसै, संतन कहो पुकार, कहु नानक ते भज मन,
1: कहो निज उतरै
0: पार। सुख दुख जे परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहु नानक सुन रे मन,
1: डोलन ते चुका ठहरै
0: सो मूरत भगवान। उस्त निंदया नाहे जेहे, कंचन लो समान, कहु नानक सुन रे मन,
1: भगत रहे तै
0: मुक्त ताहे तै जान,
1: नित नित हर गाइए,
0: हरख सोख जाके नहीं,
1: कपट खुलाने
0: बैरी मीत समान। कहु नानक सुन रे मन, मुक्त ताहे तै जान, पै काहू को देत नह, नह पै मानत आन। कहु नानक सुन रे मन, ज्ञानी ताहे बखान,
1: गुरमुख जपी है तेरे चंद,
0: जे बिखिया सगली तजी, लियो भेख बैराग, कहु नानक सुन रे मन, ते नर माथै पाग, जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास,
1: बिन हर पात नहीं छुटकारा,
0: कहु नानक सुन रे मन, तेह घट ब्रह्म निवास, जे प्राणी हो मैं तजी, करता राम पछान, कहु नानक बहुमुक्त नर, ए मन साची मान,
1: हर का जसन
0: है नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को ना, निसदिन जो नानक भजै, सफल हो है तेह काम,
1: हकीकत संत पवित्र,
0: जेबा गुण गोबिंद भजहो, कर्म सुनो हर नाम,
1: गौ कर पकरी न आई,
0: कहु नानक सुन रे मन, पर है न जमकै ताम,
1: सुन संतो निर्विचार राम नाम,
0: जो प्राणी ममता तजै,
1: आधारी

0: बिसरयो गोविंद नाम, कहु नानक बिनु हर भजन, जीवन कौने का
1: देखो
0: प्राणी, राम न चेतई

0: जाना भी दे प्रेम में नहीं जाना
1: बिरथा सब ही मान
0: अपनी कथा पे जाना है
1: करणो हो तो सोना कियो
0: सरकारी जन पे कोई हरे देव देवी
1: परे ओ लोभ के फंदा नानक समयो रम गयो
0: अपने की आप
1: अब क्यों रोवत अंदा मन माया में रम रहे हो निकसत नाहिन मीता नानक।

कहु नानक मन सिमरत पूर्ण हो वह काम, झूठे मान कहा करे जग सुपने ज्यो जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान, गर्भ करत है देह को बिन सैशन मैं मीत, जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत, जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नारो हर अंतर नहीं नानक साची मान, एक भगत भगवान जे प्राणी कह नाहे मन, जैसे

कर कृपा पार ब्रह्मया, राम कली महला पांचवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जा का सिमरन व्यर्था ना जाई रहो, दर्शन पेखत होए निहाल, जा की तोर काटे जा मंजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जा के मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पात तो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान, निर्मल मंत दे जिस दान, तजे विकार बिन से अभिमान, एक तिहाई साध के संग, पाप बिनासे नाम के रंग, गौर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रब रया गुणतास, दर्श दे तारोस प्रभ्यास, नित नानक चित वे सच अरदास, राग राम कली महला पांचवा, घर दूजा दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटे मेरे मीत, रहो गुण गावत होवत परगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत में होए उधार, नानक पव जले उतर सपार, राम कली महला पांचवा, गुरपुरा मेरा गुरपुरा, राम नाम जप सदा सुहिले, सगल बिना से रोग कूरा रहो, एक रादो साचा सोए, जाकी सारन सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी पूक, हर सिमरत बिन से सब दुख, सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपुरे सब चिंत मिटाई, आठ पैर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आप, राग राम कली महला पांचवा, पड़ताल घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नर नर हे नमस्कार, जलन थलन बसुद गगन, एक एक ओंकारन रहाओ, हरन तरन पुन पुने करन, नै ग्रह निरहारन, गंभीर तीर नाम हीर, ऊच मोच अपारन, करन केल गुण अमोल, नानक बलिहारन, राम कली महला पांचवा, रूप रंग सुगंध भोग, त्याग चले माया शले कनक कामनी, रहाओ भंडार दर व्यर्भ खरब, पेख लीला मन सधारे, नै संग गामनी, सोतिक लत्र प्रात मीत, उर्ज पर्यो परम मोयो, ए विरख शामनी, चरण कमल सरन नानक, सुख संत पावनी, राग राम कली महला नौमा तिप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग राम कली महला नौमा तिप दे रे मानी ओट लिहो हर नामा, जाके सिमरन दुरमत नासे, पावे पद निर्वाना रहो, बड़ पागी तै जन को जानो, जो हर के गुण गावे, जन्म जन्म के पाप खोए के फुन बैकुंठ सधावे, अजा मल को अंत काल में नारायण सो दियाई, जा गत को जोगी सरवंचत, सो गत शिन में पाई, नाहिन गुण नाहिन किछ विद्या, धर्म कौन गज कीना।

जाते दुर्मत सगल विनाशे, राम भगत मन पीजे राओ। मन माया में उर्ज रहो है, बूझे नै किछ ज्ञाना, कौन नाम जग जाके सिमरे, पावे पद निर्वाणा। पहे दयाल कृपाल संत जन, तब इह बात बताई, सर्व धर्म मानो तय किए, जय प्रभु कीरत गाई। राम नाम नर निसबासर में, निमख एक ओर धरे, जम को त्रास मिटे नानक तें, अपनो जन्म सवारे। राम कली महला नौमा, प्राणी नारायण सोधले, छिन छिन औंद कटे निसवासर, विरथा जात है नेराओ। तरना पो विखियन स्यों खोयो, बालपन अज्ञान, विरद पयो जो नहीं समझे, कौन कुमतुर जाना। मानस जन्म दियो जय ठाकुर, सोते क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा के सिमरे, निमख तना ताको गायो। माया को मद कहाँ करते है, संग न कहूँ जाई, नानक कहत चेत चिंतामण, होए है अंत सहाई। राम कली महला पहला, अष्टपदियाँ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन अर तप्त रहे, सात आरती जो पौन चलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। जीवन तलब निवार होवे, परवाना रहे तिघाना, कल लखन विचार। रहाओ किते देस ना आया सुनिए, तीर्थ पास ना बैठा, दाता दान करे तै नाही, महलो सार न बैठा। जे को सत करे सो सीजे, तप कर तप न होई, जे को नाओ ले बदनामी, कल के लखणी। जिस सिख दारी तिसे खुआरी, चाकर के हे डरना, जा सिख दारी पवे जंजीरे, ता चाकर हथों मरना। आंख गुणा कल आई है, तेहो जुग केरा कहया तपावस, जे गुण दे ता पाई है। रहो कल कल वाली सरा निवेड़ी, काजी कृष्णा हुआ, बाणी ब्रह्मा वेद थर्वण, करणी कीरत लह्या। पत बिन पूजा सत बिन संजम, जत बिन काहे जनेऊ, ना वो तो वो तिलक चढ़ावो, सोच बिन सोच न होई। कल परवान कतेब कुरान, पोथी पंडित रहे पुराण, नानक नाओ पया रहमान, कर करता तू एको जान। नानक नाम मिले वडियाई, एदो ऊपर कर्म नहीं, जे कर होंदे मंगण जाइए, फिर उलामा मिले तही। राम कली महला पहला, जग पर बोदे मड़ी बधावे, आसन त्याग काहे सच पावे। ममता मोह कामन हितकारी, ना ओ धूती ना संसारी। जोगी वैस रहो दुबिदा दुख पागे, कर कर मांगत ला।

पाएं, भिख्या सहज विचारी खाएं, भस्म चढ़ाए करे पाखंड, माया मोह सह जाम डांड, फूटे खापर पीक न पाए, बंधन वाद्या मैं जाए, बिंदन राखे जती कहावें, माई मांगत त्रै लुभावें, निर्दया नहीं होत जोत उजाला, बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला, भेख करे खिंता बो थटुआ, झूठो खेल खेले बो नटुआ, अंतर अगन चिंता बो जारे, बिन कर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साधु लुभाना, पशु पय नहीं मिटे निशाना, त्रै विद लोगा त्रै विद जोगा, शब्द विचारे चौकस सोगा, ऊजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पै नौ निद तू करणे जोग, थाप थापे करे सहोग, जत सत संजम सच सुचेत, नानक जोगी त्रै पवन मेत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागे, सुरत शब्द तुन अंतर जागे, बाजे अनहद मेरा मन लेना, गुर बचनी सच नाम पतेना, प्राणी राम भगत सुख पाइए, गुरमुख हर हर मीठा लागे, गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाइए राओ, माया मोह विवर

0: सहज निरंतर रहो समाए, गुरमुख जाग रहियो दूता, सद बैरागी तत् परोता, जग सोता मरिया वै जाए, बिन गुर शब्द न सोजी पाए, आनंद शब्द बजे दिन राती, अभिगत की गत गुरमुख जाती, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रब रहा निर्वाणी, सुन समाध सहज मन राता, तज हो लोभा एको जाता, गुर चेले अपना मन मान्या, नानक दूजा मेट समान्या, राम कली महला पहला, साहा गणे न करे विचार, साहे ऊपर एक अहंकार, जिस गुर मिले सोई बिद जाने, गुरमत होए त हुक्म पछाणे, झूठ न बोल पांडे सच कहिए, होमे जाए शब्द कर लहिए, रहाओ गण गण ज्योतक काढ़े कीनी, पड़े सुनावे तत न चीनी, सबसे ऊपर गुरे शब्द विचार, होर कथनी बदो न सगली शार, ना मैं तो मैं पूजे सैला, बिन हर राते मैणो मैला, गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ, मुक्त पाण प्राण जप हर किर तारथ, बाचे वाचन वेद विचारे, आप डुबे क्यों पितरां तारे, कट कट ब्रह्म चीने जन कोए, सतगुर मिले त सोजे होए, गणत गणिए सहसा दुख जिए, गुर की सरण पवै सुख थिए, कर अपराध सरण हम आया, गुर हर पेटे पूर्व कमाया, गुर सरण न आइए ब्रह्म न पाइए, भरम पलाइए जन्म मारे आइए, जमदर वादो मरे विकार, ना हृदय नाम ना शब्द अचार, एक पांदे पंडित मिसर कहावे, दुबदा राते महल न पावे, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मदे को जाने अपार, एक बुरा पला सचे कै, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेके, बिरली गुरमुख बिरली को जानिया, आवण जाना मेट समाणिया, जिनके हिरदे एक अंकार, सर्ब गुणी साचा विचार, गुर के पाणे कर्म कमावे, नानक साचे साच समावे, राम कली महला पहला, हठ निग्रह कर काया सीजे, वर्त तपन कर मन ही पीजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग कीजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस न सके हर का रस पीजे, रहाओ बाद पड़े रागी जग पीजे, त्रै गुण विखिया जन्म मरीजे, राम नाम बिन दुख सहीजे, चाड़स पवन सिंघासन पीजे, न्यूली कर्म खट कर्म करीजे, राम नाम बिन विरथा सास लीजे, अंतर पंचगन को तीरज तीजे, अंतर चोर क्यों साध लीजे, गुरमुख होए काया गढ़ लीजे, अंतर मैल तीरथ परमीजे, मन नहीं सोचा क्या सोच करीजे, किरत पया दोस कां को दीजे, अन न काहे देही दुख दीजे, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं तीजे, मन मुख जन में जन्म मरीजे, सतगुर पूछ संगत जन कीजे, मन हर राचे
1: नहीं जन्म मरीजे, राम नाम बिन क्या कर्म कीजे, उंदर दुंदर पास त्रीजे, तुर की सेवा राम रवीजे, नानक नाम मिला कृपा प्रभ कीजे, राम कली महला पहला, अंतर उत भुज अबर न कोई, जो कहिया सो प्रभ ते होई, जुग है जुगंतर साहब सच सोई, ओत पाता परलो अवर न कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहरा गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया, हर का नाम ना लगा, जम

लाई। पंडित पढ़ाए पढ़वाद वखाणै तिन्ना बूझ न पाई। बिखिया माते भरम पलाए उपदेश कह के सुपहाई। भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई।

0: जोग वावे अपना सकत न बैसे से
1: जहां त्रिखा मन तुझे
0: प्रीतम हाथ बढ़िया न जय पावे ता दे आप करे किसे आखे अवर न कोई करे
1: विश्राम हर का नाम
0: बीजो सूझे को नहीं बहेदली चा पाए नर

0: माया
1: एको को एके को सजे को जाने हमें दूजा दूर किया सो जोगी को शब्द साने अंतर कमल प्रकाश तिया
0: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता
1: जीवित मरे ता सब के सो दे अंतर जाने सर्व दया नानक ता को मिले वडाई आप साने सर्व दिया
0: साचा
1: युग जे साच समावे साचे सूजे

0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लगे तुलकवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर जी
1: नद करे हैं शब्द काट में आवश्य विचों पर मंगवाए तन मंदिर।

0: अलख लकाई श्लोक माला तेजा
1: इसके हाथ हुए
0: हर माहे अनंत है कूड़ी आवे जाए पाणे चले अपने बोती ले सजाए
1: जानते अपने
0: और नैन में सब गए।

वास और उर्दन करे निरंजन वास चांद सूरज की पाए गांड ते सुदासी का पड़े न कान बोले गोपी चांद सात स्वरूप पमर दंत मारे कना रूप महला पहला सो पखंडी जे काया पखाले काया के अगन ब्रह्म पर जाले सुपने बेंदना ही चरणा तिज पखंडी जरना मरना बोले चरपट

साहिब मेरा उजला जेको चित करे नानक सोई सेविया सदा सदा जो दे नानक सोई सेविया जित सेविया दुख जाए अवगुण मंजन गुण रवे मन सुख वसे आहे पौड़े आपे आप वरता आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पतियायन जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीट विछड़िया मेले प्रभु दरगाह का बसीट हर नाम मंत्र लायदा कटे होमे रोग नानक सतगुरु तिना मिलाया बिना तुरे पया संजोग महला पैमा एक सज्जन सब

0: सागर पर पूरे काय खर्च रहे तो नावे सरवरा से दूर ना होए करते एवे पावे जन नानक जिसके मस्तक भाग तुरलिखिया सो सिख गुरु का आवे आप तरह कुटुंब सब तारे सब शिष्ट छुड़ावे महला पायमा पंडित खाए बोती राही कोरड़ मोठ अजनेहा अंदर मोहित परम व्यापार तिष्ठे नाही देहा कूड़ी आवे कूड़ी जावे माया की नीत जो सच कहता सोहे आवे अंतर बहुत आरोहा व्यापार दुर्मत कुबुद कुंभड़ा माला का तीस मोवा ठगे छेती जागर ठग रल आया साथ भी इको जिहा सतगुर श्रावण दरी विचों कढ़े तां उगड़ आया लोहा बहुती बहुते ही थाए रलाए रलाए दिता उगड़िया बड़दा आगे आए खिलवा सतगुर की जय सन्ने आवे फिर मंगलो कंचन हवा सतगुण वैर पुत्र सत समाने अवगुण कटे कर सुख देहा नानक जिस तुर मस्तक लिखा ते सतगुर नाल सुनया अमर बाण सतगुर पुर की जिस कृपाल होवे ते सहज देव सेहा आवण जाना तिस का कटिए सदा सदा सुख ए होहा पौड़ी जो दुद पाणा जानत सो तुद बुझे जो तुद पाणा जानत सो दरगाह से जे सुन तेरी नदर होमे तिस हर हर नाम कमा बना संतोष कलमल तिस पै जिसके स्वामी बाल निरपो सो पै जिसनो करो तुम कृपाल सच्चा सो दे जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थे जिसनो तेरी माया नाम पोहे अपने जिसनो मैं सदा दे हर
1: सुप्राप्त समर्थ हो हो नाम हर वात हुए तन संचहो हो बहो भगवंत संजना का निर्मल मन एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस धन कहो चार कुंट उठता वह सो धनु हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बाचे मीत
2: दर्शन देखना
1: सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा कहो कर है भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी आने कहे उपावी रोग न जाए रोग मिटाए हर वखत लाए सरनिधान लहे हर नाम निदान
0: जन्म मिटाए
1: जाप नानक दर्ग है परवान मन प्रबोध हर कह नाए दुष्टाव त्यावे ठाए ता को बिघन न लागे कोए जा कर दाय बसाय हर सोई कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ ओ बिनसाय पूर्ण होए आस भग भाए आत्म प्रगास तू कर जाए बसाय बिनासी कौन नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जम साचा जन्म मरै सो काचो काचा वा गमन मिटै प्रभु सेविया त्याग सरन गुरुदेव उत्तम जन का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनकुपा न छुटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करहु मन लाए मन बंछत नानक फल पावे संग न चाल स्थिरै तना तू क्या लपटा वह मूर्ख मना सुतमीत कुटंबर बनता अंते कहो तुम कवन सुना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार वस हस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिंदी ए तस बुझै नाम बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू लेहे एयाने भगत बिना बड़ू बे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन जन के किल बिख जाए आप जपहो वरा नाम जपावहो सुनत कहत रहत गत पावहो सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ तेरी उतर समैल बिन सजाए होमै बिख फैल हो है।

सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निम खर के गुण गाए, अनुराज भोग बड़े आए, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत रसनाम जपति, हर हर नीत भली सुकरनी, शोभा तनवंत हृदय बसे, पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देव निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक

0: अष्टपदी। जब अकार कशनम दृष्टि तप अपन तब कहते होता, जब तहरी अपन सुन्न समाध तब बैर विरोध केस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जाप तब हर्क सो कह कसै व्याप, जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किसोत परम, आपन खेल आप वर्ती जा नानक करण हार न दूजा। जब होत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी, जब एक कहे हरग मा पार तब नरक सुर कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो केत ठाए, जब आप है आप अपनी जोत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै, अपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम पार, अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: अंदर विदा सचना
0: तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन
1: आपे की तो रचना
0: अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे, अपने आप आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौन मान कौन अभिमान, जय सू केवल जगदीश
1: नाउ करता
0: तह शल शदर लगत कहो कीस, जय जो स्वरूपी जो संग समाव तह कसै भूख तृप्तावै करन करावन करन हार, नानक करते का नाहि सुमाव, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई, जय सर्व कलाया पै परवीन तह वेद देव कहा कोटी, जब अपने आप आप उर तहारे तब सगन आप सगन कहा विचार, जय अपनी ऊंचे अपने आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हुआ, जय अशल शेद अपेद समाया ऊहा कसह व्याप्त माया, आपस को आपया देश देह गुण का नाही प्रवेश, जय के एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय अपने आप आप पतियारा

मिले। साद संग मिल कर हो आनंद गुण गाव हो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करहो विचार दुर्लभ देखा करहो उदार अमृत बचन हर के गुण गाव।